0: केंद्र हापांग बीसीसी पुमानरगै लोको हामक्राय निबागै शिविर जोगाजागै तंना अबो ओ जून तानिनो पुस्कांग सालची ब्रिंचिमी सालची दो जरा हास्ते बेरेनी शिविरंगने रविन्द्र शतवार्षिकी भवन अबनो कारे ब्लॉक ताई आउलि आमचाई नि बागै शिविरंगन शिविर जुगल जगन अजून तालिन सालची बनी सिमी सालची सिनी साल जरा अ शिविर नहीं सजाखा आरो सजाग दंग शिविर नांगमानी नारक जगन आयुष्मान भारत पीएम सूर्यगर पीएम सनिधि अमहरग्न रगै लुकरग्न सिचारी मूंग तई बरंगनी मूंग रग सेबसाब मानन बगै तिसा जागोन होननानै साजाखा
1: कथुन हुकुमु नायखुं निबखाथै तेकाइसा साख्लाय जाखा आबंखा बुसकां सालनै जिसा आगस्ट नि सिमि सालनि जिथाम आगस्ट जरा जेला केरं निबखाथै खवाय जेलानि लवाजिमाबाय कायसा आलाय दाखे लुक आदालतनि लवाजिमुं नार जाखा ओ जगाओ ऑनलाइन ताई ऑफलाइन ते बो लोगो मानजक मन्नते ही नहीं शेप रजक नहीं अबोनी नहर मुंग अंखा ये बात थी अंखा कलाइके जुंजाल अप्पे रिना नी तंकचां के होता ताई शामुं का हम क्लाइना नी ओ शामुनी बिशिंग ते खोरक्सा खोरक्सा नी मुसुमा बाई शालाई मालाई मानी बिशिंग ते कचां कचां के शामुंग रोक पाई नानी, शामुंग चासारे नानी।
0: आओ। तेरे कैसे कोक्तुम ना रहे ना? लुकरों ने तंगोसंग ताई बाय अपचरिनों में थंगना ना भागई। खुआई हंकोर ने इंडो बांग्ला आर्यम सहियो। 163 दारा वक्सिन जाखा आरो सजाखा आरि आमसानि 12 मिटार खबजक थायरगो हर दामसानि सिमि आसुक दाम बाजारा लुकुरोंनि थांलाय सिथानि किहसक माना खलायमुं दायगि जाखा आबो तंगनो बुसकां जुलाइ तानि साल सिसिनि साल जरा तुमुं ओ केरन राजानो गसिया याखबा मानिया लुकुरोंन हमके BNSS निशानी जितम 163 दरनर गई नंगमसक माजरा रजना हिनी साजा का अब है ना कर्बुक साबिरिशन नी खबजक बीओपी लवोकांटो पारानिशिमी बीओपी चापलिन छोरा जोरा आरियाम से नी बारामी तरो खबजक थायरगो हर दामदोक निशिमी अशुक दामदोक जोरा आरोप है ना 163 एक जारी खा जाखा नहीं छा जाखा आरोप छा जाखा आ हर दामदोक निश्चित

थांनाय दाननैसिफोराव दंखा कुसुगो 35 फुटा 2 डिग्री सेलसियास ते खामानुक जखा 26 डिग्री सेलसियास नंबर 2 हखनि मारि कुसुगो थंगा राव जुकुसि जाखलै ते खामानुक जखा राव दक्सि खलै आसिक जरा खनाखिया नंबर 3 नि कग्रक हायनि खरंगा तबो बायथखौ खनालायनो रोजाबमुं रोजाबमुं खरंगानो झरना आरें

0: राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

आओ खाना तो तोड़ जाओ उन चंखना लाइक है अंतर रंकाई पेंग बाय रसाप जाक रसापुं फड़ी चिनिया को ते बोझरा तों खुबा चंते बोर रसापुं खाना लाये ने ताबुनी रसापुं खाना लाये ने राम भक्ति मल सम्बाय रसाप जाग रसापुं अजराव खाना लाये ने फड़ी

0: आउ खना तो तोगले चा मुंग जें खनाई मान लाइक हैं फाड़ी वाज रावा नाई नेले ने कोक दुगा शावतों हलो बले खना दी बोर कहां बुकोक
1: बुकोक
0: बले खना
1: हां तेरे लोग खाने लामा फायमा हंगा कान वाच मुंह का मुटिंग जा गुता जाने की ओकरा रंग नॉन दाम दिया बोरम दिया ओकरा रंग कोक ना है या ये अब है क्या तो मैं बोर रोग क्या जामा कम नुक जा गुदो बुको
0: आओ
1: गए कैसे कैसे का ओकरा रंग दाम था का जिस दूं कहीं खाने तो नहीं चले गुदो बुको ये अब है क्या खाने बोर वो भी बहुत ही जब जाने बुको वाच मुंह जोड़ा बो ना इनके पे कैसे हंगा है बो आप बात

0: अब तो बुमा बुफानो बरम रियाङै न ब अब हाय पुइला मिसिमे न ब बिनि बिनि वान सुख माने न से अब हाय केमनि कखना यांगनानि अब हाय
1: आबुनो पेते गासन गाय मतिं जे बतां जे हामेला मन हंगाय सिनि बखरग हामना बुखला नंगु दो बुखु आ माने वान सुख मासले गाय हामे कखना हंगाय दोदिनि सिनि बखरग ब हाबैतां रोंगु बुथांगु हामे मंगाय जा आनि वान सुख मासले खं आमतिं जों मा कखता
0: आइनो
1: गाय पुते गासे पोग वा हायनो तब आ खास उखनो का आ खनो को ओराव गासे सगै दं खाबो तो तोले सगै थाङे बले बुखु आरो ओ इसिं जत हलायो गासे सखान खान जदन को सखुन जागो आबं का हान दतं खानेर दतं सुमान आ नाय इंगे चेर रगो
0: तोले
1: हामिया सुन थामे बले बुखु गासे खान दं बले आरो
0: हासाला तं दतै हासाला तं दतै नाया ओइ सामा बाइसिम बंगिया ता हाया दा
1: आबं ता इंगे आबं ओ ओराव कयता गाहाम दं आमु तो सुमान आ नि बले इंगे इंगे चेर रगो आमु तं ता बो
0: जराय खरकनि खरक दाम तंखांके आबुमा बुफारंगे सायमानो जरायबाय निनि जराय अकरा कुसु गजार आबो गासाते गासाबाय बरकनि वान सुखमानि बरकनि थगजाकमानि बरकनि हामजाकमानि बरकनि जाजाकमानि आबर बेबाक मुजुदा जुदा हेंके आबो न जों बुमा बुफाले आबो ना आबो जों फोरोंमानि बेबाक न बाक्साके फोरोंगौ हायबानो जराय रक बरक बरकनि वान सुखमुं बरकनि सिमुं रिमुं बरकबो साखानि जे बरक मानै फायमानि आबुबायनो बरकबो रियेक खायो आबाहायखैनो बरकबो वान सुखै जलिबो सोरोंगो हेंखे आरो जों जराय रक मुंसा मुंसुङै थांगा हेंखे देराफन देराखा जेसाफन हांखे जों बुमा बुफारक न दस्रै कक सानानि गोरै आबोन बाक्सा बाक्सा हेंखे दातिन हिसाखैन फोरों फोरों जायगानि बसा फोरों बुमा बुफा फोरोंगियाना आइ हाइरक गोबां मानस हानलायो सालायो आबो हाइरक जों सानानै कक्रे जों जत बुमा बुफानो नायो बसा गाहाम ख्लायदों गाहाम ओंथों होनायनाय नायनायनो हाइन हाइ कक दुगो साबदों हेलो
2: दिपर काहाम मेडाम
0: बेलायखेनो दिपर काहाम ताखु
2: खुलम काहाम बाय
0: बेलायखेनो लामसु ताखु
2: ना वान सुमुनि बान्दाव तामो
0: जों गाहामनो हमखे सोरोंनानै किसा तुप जाग्लायो तै हामियानो हमखे किसा ग्लायं जाग्लायो आबहायनो सालाय दं माने आब तामनि बागै ओंना सालाय दं माता
2: मेडाम शिल्पी फैगोन ना माल माता रंग
0: ট্রায়াল রুম তো চুমুয়া কই নাই মানো ট্রায়াল রুম নাই না কাছে অকুলুক বেসকাং বেবা আবনা তা তদা তর চেরা জি কোন বেবা না নাই মান নাই নো পাই মানো

0: 브랜디 옵션을 그랬죠. 브랜디는
1: 아무도 아프리카 코라니세 코라 코라니세 코라 탄다 헤다
0: 이게 다 팩몽 때가서 팩몽 뭐 하냐 다 보지 이 정도 뭐 하고 드럭스는 이제 사이 정도요 아무 뭐 하냐 무슨 꿀하고 해 하고 태블릿 옥는 살아요 댄라이 옥는 라요
1: 아무 뭐 꿀하 그나마는 이게 꿀하 마그나시 사르후 팔나이라고
0: 꿀하 하고 그래서 마그나시 좀 보러 가이 흥그릉 가이 하고 그래서 पानी अब खाई दंग था पैसे कनो नो अब कैसे लाइट नहीं लाइट नो बनो लाइट बो अब खाई दंग
1: अब नंग चाह के बहुत रंग मान
0: एक गुली तो जो समान ही दंग था क्या बन बने ना सुन चीनी ना मंगाई जाए अनि डॉल अनो बोरो तलंगे दंग अंग जाए पाया बंदो बैठ दंगो अनि पाया बंदो माने बिस्तर जोर जान बगे कहाँ अब सुन बुझी हुई सोलन ना मंगाई सुन चीनी बोरो सुन एक्चुअली आसे खेनो यखबा सं सरानि सिमिकेबो हामिया काय थाया अब तुरुक तुरुक सं हामिया नि याफिसो तगेसे तंग मैडम सं लामा हामियाओ भागे कलाय हम बासं ताबुनि जरावं था हामियाओ केबो कासनै करे इन बागै काहम केबो आबो वान थनै करे सं ताबो नगो सलाबे सला काय जों मनि हे आबो सादे बेगर बुरै दङ सं सार दुनिया आबो कासे तमका के बुरै बेग बेबो काय जों मनि सं नगो से बुरै बो सलांगे थामन नगो सलाबो बुरै थामन नगो ओबाहेरो जाबो अब कैसा तरह तरह सुनसान है तो मुंग अब कई तो नो मामले तो नो ये बेंगे छंगे तो मुटाई को अब कई
1: अब रोक तो बरोक निजा ने मुसुंग मानी के ओ चामानी नंग मानी फेक चंगलाई चामुंग नंग माने हमिया माने तो मुंग हमिया अब रोक गंग कैसे तम निशानाई अब रोक गंग कैसे शरणगी इंग मानी अब रोक कैसे शरणगी इंग मानी हमिया रोक बाई तोंगुई गदाले इंग मानी दा
0: बरों में बिशिंगो पला तो मैडम पला का सुनो कहाँ मने कहाँ नहीं लामा ओप नो गो हमिया का सुनो सिंह हमियो बॉय तला ना नहीं तुरंग बॉय जाना नहीं सिंदाल कोई का बॉय तली बॉय तला अब तो ना निताई को के कहाँ क्या अब पला बाई नंग सहस्ती दूल जावे खालो गई खासंग मा मानो खाको न्याने गई फरसते खोजो ना हम जावे अब खालो गई तो ना निताई को अब है तो ना ताजा का अब जंग ब्लाई बुरी था इसं ini live sun kabang masih ni jorap payo sudan live ni jorap payo kajang mani pore sun sun sa kajang kajang ni jorap payo kai paisa ko sun busarong no pusinani sini kabang mas jorap payo sini sun sa ro tibo no
1: kaya
0: sun os jorap wo sun soi kubui ke tongwe sang manai kubuyo tongwe sang manai kaham kaisa samong nang mongo kaisa borong no nungwe kalang manai bono paisa ko zoi mo bono umor ragai waterfall thana musun sinai sen kobang ma jaga aro naikeng ate ke jaga maida mun gasnai gasen mobile wa hanya madam sen mobile pula ni sini mane nai nai keng gasen kite ni sini suru khayo amun pura android and pura sen kobang ma smartphone iphone no thango sen iphone no ni bagai kobang ma bo to mu hame o thango gasen musung ma bo bakhani musung ma boro
1: ni musung ma ni nga bangrek bangrek bangrek bangrek he di bangrek bangrek manrek manai rek
0: जैसे सिनी बड़ो रंग ने मुसुंग मा फायो आसुनो सुंग सामो हामे ओ माने अब मजबूरी
1: हो ताई जिंग जैसे मुसुंग गो आम सिक सिंग सामो फ्लाई मान या हंका एम फियाबा मानाला मुसुंग हुई तो हंका अब ओ लामा को कोई

आव खनाता तो रसाब मुझे खनाई मन लाइक है रसाब ना करें मुझे नहीं ताको मनोरंजन भाई रसाब जागर रसाब मु कहाँ तो अंगनी कोकनो तो चिंग शालाई भैया ताई चिंग जो तो नो शावी वो मानो कहाँ बाहिके तो अंगनी बाहिके कहाँ के थाना ने प्याबा चिनी मुसुंगनी नो चिंग नो हम्या वो खिक लायो चिंग कबांग मुसुंगनी तो मानी बारा मुसुंगनी चिंग जे आजी मान मानी आबुनी से बारा माना मुसुंगनी भाई नो चिंग देरा मुंगो लायो हम्या वो लायो आबुनी बागई चिन्नी जे तंगमानी आबू बैन जो बखा कसम तंगनानी आबू से अंगनानी नांगनाय आबू हाइके से जो तंगलायना नांगनाय जो आजी मानी बाराबो जो मानी मानिया हाय गबा गबाल जे सैजाक तंगमानी आबूनी बाराबो मानी मानिया जरानी सेगांबो मानी मानिया फारी जिन खाना तो रसा मुखाना लाइन खाना फिर वाणी खाना तो रसा मुखाना लाइन

0: इतनी सी बात मारे ना शिकारी क्यों लोन सारी रात।
1: ना ना ना ना ना ना ना ना।

0: कमाल है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसे स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्र

0: क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूं।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी।

मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।